पौड़ी जित से भी है सुपाई है सो साहिब सदा संभालिया जित किता पाई अपना सा काल बुरे क्यों कालिए मंदा मुलने की चई दिल मिलन निहालिए ज्यों साहिब ना लहरिए ते बेहा पासा टालिए किसला

ने मेरा सचिया पाए दिशा कोई ना वो ना गया ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चक्र चेहन आर बरन जान आर दान रूप रंग आर चाल मूरत चालन पवित्र कोट इंद्र इंद्रवाण पवन महीप नर अस्वर नर अस्वर नेत नेत वन तृण सर्व नाम कथ कवन नाम कथ कवन कर्म नाम कर्म नाम जग और नया जग महर नया अवतार जगर आन किया दिन के दुख कोटक दिन गई मथुरा जन नाम राज मत चुन जब लो नहीं पागल लो काल कोर समुद्र में बुलाल कोर समुद्र में बुलाल में थे ही तत विचार यह मथुरा यार जग तारण लाओ अव जागर बन लाओ जप आओ जन अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव गुरु संकट जोन धर्म

चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर

प्राणी राम नाचित मद माया का अंध कहु नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंध सुख में।

0: ऊपर रखना तो आवाज़ कम कर देगा, तो तबले के चलते वो बोल दिया आवाज़ कम कर।
1: नहीं नहीं सब बोल रहे थे, सब बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, बोले लगी करके रखा, बोले कर आज ठीक है,
0: ठीक है
1: नहीं आवाज़ ठीक है आज। अभी बलवीर सिंह बोल रहा था।

विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो कहूं शास्त्रधारी कहूं।

धर्म धामी कहू सर्व ठौर गामी कहू जति कहू कामी कहू देत कहू लेत हो कहू वेद रीत कहू तस विपरीत कहू त्रिगुण अतीत कहू सर्गुण समेत हो कहूँ जटा धरी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो का तो हूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन का कहूँ छत्री हो के अरे

गीत नाद के निदान को बतावत कौन रतकारी चित्रकारी के निधान हो का तुह पयुग हो गए पीवत पिवावत हो का तुह मयुग कहूँ मद पान हो कहूँ मासुर हो के मारत मवासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ महादीन कहूँ द्रव के

पूरन प्रजं कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतथ कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पौन हरि कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्र धारी कहूँ छाला धरे छल भारी, कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद वाणी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के तरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया खिदामानी महामान हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के शुद्धता की सुरत हो के शुद्धता की शान हो, जोवन के जाल हो के काल हो के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण

कहूँ पे दरिद कहूँ पे त्यागी प्रतीत कहूँ नीता नीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ एकांति को जाप कहूँ ताप को अदाप कहूँ जोगते डिगत हो।

कोट तुरंग को रंग से कूदत पौन के गान को जात निवारे भारी भुजान के भूब बलि बेदन्यावस।

जीत फिरे सब देव दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भवान के भूपद कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथन हंद आदम दान सो संजम नेम अनेक विषय का भेद पुराण कतेब कुरान जी मीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जार सवे सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा तुरंत वास सास ना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की थार बछैया तोर दे मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हारसो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो ए

पुण्य प्रतापन बार जाए तो धुन पापन के बापुंज खपाएंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र समय लोग छपाएंगे। मानो इंद्र गजेंद्र नराधिप जयंत लोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजाधिक दान एक स्वयं साज बरेंगे। ब्रह्म सर्विशन सचिव फसे

कहा भयो जो दोलोचन बूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय ले सा समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बिता।

श्री भगवान को भेद ना पायो। तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनिच्छेद तेज उदार अनभेद रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृतवान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावद वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार वकद बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जकीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जह अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंद्र बेन नगेंद्र कई माछ काछ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण भीषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद मुगचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कौ कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र ग्रंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कौ जोग भेद उदास कहूँ निवली करम करंत कहूँ पौन हार दुरंत कहूँ तीरा दान पार कहूँ जाग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कह न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमृत रहित कहूँ वेद सिंह विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ करत जल में जाप कहूँ सहत तन प्रताप कहूँ बाद बने करंत कहूँ ताप तने सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राजरीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ सेग ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेक नाम उचरंत बरा कहूँ सन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब करम फोकट जान सब धर्म नहपल मान बिन एक नाम आधार सब करम भरम विचार। तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहां हरि उहां हरि जिमे हरि जमा हरि अलेक हरि अभेक हरि अधोग हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुई थलस्तुई नदस्तुई नदस्तुई वृषस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्धस्तुई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमी तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुही अभय तुही अछू तुई अछ तुही जतस्ुही व्रतस्ुही गतस्ुही।

हुकमल हरि का जगत हबिबुदारी की दुआ मसान बास करो ही करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदयू मोन सदे मरत है। बिंद के सदयत हीज की बटैया दे बंदरा सदयू पाए नंगे फिरत है। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत पाने चारी छेद छौना सभ्य दूतादारी पवन के हरि सो भुजंग जानियत है। तृण के भचैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नभ के उडयत आए पंछी की बडैया दे बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते मानियत है भूम के बसैया ताए भूसरी के जैया कह नभ के उडैया सो चिरैया कह बखानी है। फल के भचैया ताए बांदरी के जैया कह आदित फिरैया ते तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहा।

जग आखे बछैया सो चकोर सब मानी है। सूरज सिवया तह कौल की बटाई दे, चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मत इंदुआ कह सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी रिखी के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर और को कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूध कहियत है। मूड रूड पीटत न गुड़ता को भेद पावे, पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्या देह पै सहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाटे न बहत है। मानो फनी देव दानो न पावे भेद, भेद आने वेद कते नेत नेत के

चंद्रमाते शीतल न सूरते तपजते, इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी, सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन, सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, राम चतरण कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के दे वेदा पुराण के दे सिमरत समूहन के हुए हुए बिताए है। बोंदी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बज भय है। पीरा पिकाम्बर के ते गनेना पर देते भूमिते हुए के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र की छाया कई कोसला चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत तेज, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप दिलीप कैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सच दे करे अनेक तोपती कपड़ भेद, पोस्ती अनेक दानी बाबत है शीश का। कहा भयो मल जब काटत अनेक दंड, सोतना डंडावत अष्टांग तीस का। कहा भयो रोगी जब डारे रहे, उर्दमुख मनते न मुड़ने रायो आदिश का। कामना अधीन सदा दामना, प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जगदीश का। शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे, मुंड छटकत मित्र पुत्रों के सोग सा। हाक को चरैया फल फूल को भचैया, सदा बन को भ्रमया और दूसरों न भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घसत सिर वृक्षन सा, माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचो ई करत मोर दादर करत शोर, सदा घन घोर घन करो ई करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष, फूक फूक पाव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठार, बास करे कागा और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना, यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे स्वांगी गाँव जो गया बैरागी बने, कब हूँ सन्यास भेद बन कह दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी, कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन परे नाचत नाचन सो, ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की दर पुकारे परे, शीतकाल कुंचर गदहा अनेकता पुकार ही। कहा भयो जो पै कलवत्र लियो, काशी भी ची ची चोर ठाकुर ठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़, गंग डार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मुड़, ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पे पाइये अतापना, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए थे जो पे पाइये था जा देव पूजना, सदी तू ही उच्चरत है। नभ के उड़े थे जो पे नारायण पाइये था, नलकाश पंछी डोलबो करत है। आग में जरते गत रांड की परत, कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना तरत है। कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना तरत है।

अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे आगते कनुका गोटो आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनुका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नाते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माछ केते उन का करत भाच केते अच वच होए सपज उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पाछ का करेंगे भाच केतक प्रतच होए पचाए।

ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे सदा सिद्धता बुद्धता बिरद रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कान भेखंग कहा नामता को कहा का कहा वै कहा कह बखानो कह मैं ना अवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद वैखंग भेखंग जोनी सर्वे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आदबद अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अदभय अविनाशी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छे विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना मरणंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना जोभंग अभूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचे आदवै जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अक्षय आद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न सर्मंग न साकंग न बरमंग न चरमंग न कर्मंग न बाके न सतरंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद्रूपे नमो आद्रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजतामे कहूं अक्षर के पत्थर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर भूपं कहूं ने गृहंग कहूं दे दोखं कहूं कधि रोग के सोग शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साध गीताम सी हो कहूं जोग विद्या धरे ताप सी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोप की काप कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपंग कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपंग कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपंग कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपंग कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपंग जरा रा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देव वानी कहूं राज विद्या धरे कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारू गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अछे आद अद्वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तुअस्तंग अभूते
ਸਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਅਭਿਆਗ ਤੇਜ ਅਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਛੈ ਸਰੂਪਦ ਬੈਨਾਸ ਅਨ ਤੁਟ ਤੇਜ ਅਨ ਖੁੱਡ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਗ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨ ਭੂਤ ਤੇਜ ਅਨ ਛਿਜ ਗਾ ਹਰਤਾ ਸਦੀਵ ਹਰਤਾ ਸਨਾਤ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਅਨ ਭੂਤ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਅਨ ਭੂਤ ਧਰਮ ਜੈ ਸਤਰੁ ਮਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਜਾ ਜੈ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਮਾਤ ਜੈ ਕਰਮ ਭਰ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜੈ ਨੇ ਗੇ ਨੇ ਬਿਉਧ ਬਾਣ ਜੈ ਜਾਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਜੈ ਨੇ ਗੇ ਨੇ ਚੈਨ ਛਿੱਤਰ ਜੈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਰੇਗ ਜੈ ਜਨਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਫੇਕ ਜੈ ਕਰਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਰ ਮਾਤ ਜੈ ਨਾਮ ਸਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਗ ਬਿਆ ਜੈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਸਤਰ ਸਾਜ ਜੈ ਤ੍ਰਾਸ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਨਾ ਜੈ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਰਾਜ ਜੈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਜੈ ਤ੍ਰਾਸ ਆਦ ਨਹੀਂ ਭੂਮ ਭੁਗਤ ਜੈ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਕਟਿਓ ਨੰਗ ਅੱਛੈ ਸਰੂਪ ਅਖੈ ਅਭੰਗ ਜੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਉਚਰੰਤ ਵੇਦ ਜੈ ਅਲਗ ਰੂਪ ਕਥਤ ਕਤੇਬ ਜੈ ਅਲਗ ਰੂਪ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਜੈ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਛੈ ਅਤੋਲ ਜੈ ਧਿਆਨ ਕਾਜ ਮੁੰਜਨ ਆਨੰਦ ਕਈ ਕਲਪ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਤੁਰੰਤ ਤਨ ਸੀਤ ਘਾਮ ਵਰਖਾ ਸਹੰਤ ਕਈ ਕਲਪ ਏਕ ਆਸਨ ਬਿਤੰਤ ਕਈ ਜਤਤ ਜੋਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤਦਪ ਪਾਵਤ ਨ ਪਾਰ ਕਹਿ ਉੜਦ ਬਾ ਦੇਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਉੜਦ ਮਤ ਪਾਵਕ ਝੁਲੰਤ ਕਈ ਸਿਮਰੇ ਸ਼ਾਤਰ ਉਚਰੰਤ ਬੇਦ ਕਈ ਕੋਪ ਕਾਜ ਕਥਤ ਕਤੇ ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਾਵਨ ਹਾਰ ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਟ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਆਹਾਰ ਕਈ ਕਰਤ ਸਾਗ ਪੈ ਪਤ੍ਰ ਭੱਛ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਦੇਹ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਤੱਛ ਕਈ ਗੀਨ ਗਾਨ ਗੰਧਰਵ ਰੀਤ ਕਈ ਬੇਦ ਸ਼ਾਤ ਬਿਰਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਈ ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਜਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਹੂੰ ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਕਈ ਦੇਦ ਦੇਦ ਭਾਖਾ ਰਟਨ ਕਈ ਦੇਦ ਦੇਦ ਵਿਦਿਆ ਪੜੰਤ ਕਈ ਕਰਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਈ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮਸੋ ਭਰਮ ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਦੇਵ ਕਰਮ ਕਈ ਕਰਤ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਹੂੰ ਰਾਜਦੀਤ ਕਹੂੰ ਯੋਗ ਧਰਮ ਕਹੂੰ ਸਿਮਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸਰੋ ਸੋ ਕਰਮ ਨਿਵਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਹਸਤਦਾਨ ਕਹੂੰ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਮੱਕੋ ਵਖਾਨ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਹੂੰ ਯੋਗ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਬਿਰਤ ਚਾਰ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਜਜ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਹੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਹੂੰ ਅਰਗਦਾਨ ਕਹੂੰ ਪਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਚ ਕਹੂੰ ਗਾਨ ਗੀਤ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰ ਕਹੀ ਭਜਤ ਏਕ ਭਗ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਈ ਨੇਹ ਦੇਹ ਕਈ ਗੇ ਵਾਸ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਤ ਦੇਸਨ ਉਦਾਸ ਕਈ ਜਲ ਨਿਵਾਸ ਕਈ ਅਗਨ ਤਾਪ ਕਈ ਜਪਤ ਉਰਦ ਲਟਕੰਤ ਜਾਪ ਕਈ ਜਪਤ ਜੋ ਕਲਪੰਗ ਪ੍ਰਜੰਤ ਨਹੀਂ ਤਦਤ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨ ਅੰਤ ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਦੇਸ ਦੇਖੇ ਮੁਰਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਪਾਨ ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰ ਜਗਦਾਨ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਇਕ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ਫੋਗਟੋ ਸਰਵ ਧਰਮਾ ਵਿਹੀਨ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਜੈ ਜੰਪੋ ਜੁਗਣ ਜੂਓ ਜੰਗ ਭੈ ਕੰਪੋ ਮੇਰ ਪਿਆਲ ਭੁਵੰਗ ਤਪ ਤਾਪ ਸਰਬ ਜਲੇਰੂ ਥਲੰਗ ਥਨ ਇਚਰਤ ਕੁੰਦ ਇੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਬਲੰਗ ਅਨ ਖੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਅਭਿਯੰਗ ਅਨ ਖੰਡ ਅਭੂਤ ਅਛੇਦ ਅਛਿਅੰਗ ਅਨ ਕਾਲੇ ਅਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸੁਅੰਗ ਜੈ ਠੱਟੀਆਂ ਮੇਰ ਅਕਾਸ ਭੁਵੰਗ ਅਨ ਖੰਡ ਅਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੰਗ ਜੈ ਰਚੰਗ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਬਰੰਗ ਸਭ ਕੀਨੀ ਦੀਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾ ਜੈ ਰਚੰਗ ਸਰਮ ਮਕੀਨ ਮਕਾ ਜੈ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਗ ਰੁਖੰਗ ਜੈ ਤਾਪ ਨ ਸਾਪ ਨ ਸੋਗ ਸੁਖੰਗ ਜੈ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਭੁਵੰਗ ਜੈ ਖੇਦ ਨ ਭੇਦ ਨ ਛੇਦ ਛਯੰਗ ਜੈ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤ ਨ ਮਾਤ ਪਿਤੰਗ ਜੈ ਰਚੰਗ ਛਤਰੀ ਛਤਰ ਛਿਤੰਗ ਜੈ ਰਾਗ ਨ ਰੇਗ ਨ ਰੋਗ ਭਣੰਗ ਜੈ ਦਵੈਖ ਨ ਦਾਗ ਨ ਦੋਗ ਗਣੰਗ ਜੈ ਅੰਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ ਦਸ ਚਾਰ ਕਰੀ ਨਾ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ਰਸਤਾਮਸ ਤੇਜ ਅਤੇਜ ਕੀਓ ਅਨੁਭਵ ਪਦ ਆ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿੰਦਰ ਬਿੰਦ ਨਗਿੰਦ ਨਗੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਜਛ ਗੰਧਰ ਫਣਿੰਦ ਭੁਜੰਗ ਰਚ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਨਭੇਵ ਨਰੰਗ ਰਚ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਅਭੇਵ ਨਰੰਗ ਨਰਪਾਲ ਨਿਰਪਾਲ ਕਰਾਲ ਤ੍ਰਿਗੰਗ ਕਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਭੁਜੰਗ ਨਰੰਗ ਰਚ ਅੰਡਜ ਸੇਤਜ ਉਦ ਭੁਜੰਗ ਕੀਏ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਰਾਜ ਪਿਤੰਗ ਅਨ ਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਜੋਤ ਜੁਤੰਗ ਜੈ ਤਾਤ ਨਾ ਮਾਤ ਨਾ ਭਰਾਤ ਸੁਤੰਗ ਜੈ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਜੈ ਕਮ ਜੰਪਹਿ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਜੁਅੰਗ ਨਰ ਨਾਰ ਨ ਪੁੰਸਕ ਜਾਏ ਕੀਏ ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਦੀਏ ਗਜ ਪਾਜ ਰਥਾਦਿਕ ਪਾਂਤ ਗਣੰਗ ਭੂਤ ਭਵਿਕ ਭਵਾਨ ਤੁਵੰਗ ਜੈ ਅੰਡਜ ਸੇਤ ਜੇਰ ਰਜੰਗ ਰਜ ਭੂਮ ਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਚਲੰਗ ਰਜ ਪਾਵਕ ਪਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲੀ ਬਨ ਜਾਸ ਕੀਓ ਫਲ ਫੂਲ ਕਲੀ
भूमेरकानि वाचितं रज रोजिका द चंद्र वितं दोद चंद दिनेश दीप दई जय पागु पांड प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतर द चार रचे नर गंधर देव अधेव सचे अन धूत अभूत छूत मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतर द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदर देव देव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पारण पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कदेव आनंद कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सो सिंह दो मुख ताप तपै कई कल पन लो तप ताप कर नहीं न कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सब तज है एक चित कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना नई कोट वृति इम वेद उचार सार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो भूलना काल फंदा फस है तो प्रसन्न राज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदियु सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदियु सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है चित तेज मानिए सदियु सिद्ध सिद्ध दा प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है दोग दाग दग है भूता भ्रम भेक है न तात्मा जात है न पाच्यन बरन है अधेक असेक भेक है सदयु विश्वभरण है विश्वम्बर विश्वनाथ अभिषेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिखय सदयु करम भ्रम है अद्वैक है अभेक है अलेख न जानिए सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आ देव है कहो सो कैस पाइये जिमी जमान के बिखै समस्त एक ज्योत है न घाट है न भाड़ है न गाढ़ बाढ़ होत है न हान है न बान है समान

न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दोग है, न दाग है, न द्वैग है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राहु है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न शाह है, न शाह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देव को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अकाल खंड रूप है, अच्छेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, पाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न द्वि है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभर्म है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चयन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानी है, भूम अभिज है, सदा छेद तेज मानी है, न आद है, न व्याद है, अकाद रूप लेखी है, अधोग दाग तक है, अच्छे प्रताप एक ही है, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, गंज सी विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपी नराधपी करंत सेव है, सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आते जे बड़े तपस्पति विषय

जानी है, ना जात पात्र मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है। सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह दे के अनंत भांत सो दह। तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन, आदनाद अगाध प्रगसो धर्म कर्म प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद प्रग अपार, हस कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार, जात पात न ता जाको मंत्र मातना मित्र, सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चैन न चित्र, आदे उदार बुदर अगार नाद अनंत, आद अंत न जानी अभिखा देव तुरंत, देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेव, सनकाव सन केश नंदन पावई न हसे, जज किन्नर मच्छ मानद मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही शिव सकरो मुखचार, सर्व सपत पतार के तर जापे ही जय जाप, आदेव अगा तेज अनाद मुरदताप, जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीण, जाच गंध्र देव दानो न भ्रम क्षत्रिय माहे, वैसरंग के बिखे विराजे सूत्र विवा नाहे, गुड़ गौर न भील भीकर ब्रह्म शेक स्वरूप, रात दिवस न मध उर्द न भूम काश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म प्रवीण, तीर जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन, सर्व सबत पतार के तर जानिए जय ज्योत, शेष नाम सहस्पन नेद पूरन होत, सो सोध हटे सब सुर विरोध दानव, सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ, पड़द पड़द थके महाकब गड़द गाड़ अनंत, हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत, भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब, देव दानो मूड मानो जश न जाने जेब, भूत भव भवान भूपद आद नाद नाथ, अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास, दे गे ना ने सने अभे नाद अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत, सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल फेक, चक्र चेना बरन जागो जात पात ना फेक, रूप रेख ना रंग जागो राग रूप ना रंग, सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंद आल स्वामी आदेव अपाल, दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चेना चक्र जाको चक्र चेना कार, जात पात ना गोत्र गाता रूप रेखना बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरख प्रमाथ, दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत में जयगात, भूत भव भविक भवान प्रमाण देव अगंज, आद अंत ना श्रीपद परम पुरख अभंज, धर्म के अनकरम जेता कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर माच्छ काच्छ अपार, भूम का जले थले में है मानिए जय नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद, मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद, अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल, सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाव, सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता आदरूप अपार, दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड, भूम का जले थले में जब जाप अमंड, शेष चार विचार जेते जानिए सब विचार, आदेव पार श्रीपा दुष्ट पुष्ट प्रहार, अंध ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र, जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावई से रुद्र मुखचार, कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार, आद अंतरा मत जाको भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कलयुग चत्र काल प्रधान, ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार, हार हार थके समय नहीं पाई है तय पार, नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके गंधर्व नाज पच्चर अपार, सो सो थके मासुर पायो नह पार। तो प्रसाद दोहरा
ਏਕ ਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਉਚਰਿਓ ਮਸਿਉ ਬੈਨ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ ਕਹੋ ਸਕਤ ਬੇਤੈਨ ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਧਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਹੈ ਕਹੋ ਸਗਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕਹ ਜੀ ਤਬ ਕਾ ਮਰਨ ਹੈ ਕਵਨ ਸੁਰ ਕਹ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਗੜਾ ਕੋ ਮੂੜਤਾ ਕਹਾ ਤਰਕ ਅਵਤਰਕ ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਜਤ ਹੈ ਕਵਨ ਕਵਨ ਪਾਪ ਕਾ ਧਰਮ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੋ ਭੋਗ ਹੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਅਪਕਰਮ ਦੋਹਰਾ ਕਹੋ ਸੁਸਮ ਕਾ ਸੋਕ ਹੈ ਦਮ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹੰਤ ਕੋ ਸੂਰਾ ਦਾਤਾ ਕਵਨ ਕਹੋ ਤੰਤ ਕੋ ਮਨ ਦੋਹਰਾ ਕਹਾ ਰੰਗ ਰਾਜਾ ਕਵਨ ਹਰਗ ਸੋਗ ਹੈ ਕਵਨ।

कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा, कहा कर्म को कर्म है कहा भरम को नाश, कहा चितन की चेष्टा कहा अचेत प्रकाश दोहरा, कहा नेम संयम कहा ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी, कवन कहा धर्म की हां दोहरा, को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। तो प्रसाद धीरक त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असर विहंडन दोष्ट निकंदन आदवृत, चचरासुर मारण पते उदाहरण नरक निवारण गुड़ गते, अक्षय अखंडे तेज प्रचंडे खंड उडंडे अलखमते, जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंभ कपर्दन छत्र छिते, आश्री विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते, चंडासुर चंडन मुंड मिहंडन धूम्र विधंसन महकमते, दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्द अधे, जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंभ कपर्दन आदृते, डावरू डबंक बबर बबंक भुजा फरंक तेज बरंग लंकुड़िया फांद आयुध बांध सैन विमर्दन काल सुरंग, अष्टाय चमक भूखण दमक असिंह झमक फुंग फनंग, जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंप कपर्दन जायत जिनंग, चंडासुर चंडन मुंड विमंडन खंड खंडन खून खिते, दामनी दमंकण ध्वजा फरंकण फणी फुंकारण जो जिते, सरदार विबरखण दोष प्रकरखण पुष्प प्रहरकण दोष्ट मथे, जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे, दामनी प्रहसन सोछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते, रक्तासुर आचन जुद्ध प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म वृते, सुरोणता चिंती अनल वयंती जोग जयंती खड़ग धरे, जय जय होसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे, अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ वारण शुद्ध मते, फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते, सायती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलंग, जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग, चाचर चमकारण चछुर हारण धूम धुकारण द्रप मथे, दाड़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे, करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे, जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम भिनासन धर्म धुजे, घुंगरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म धुजे, अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रणासन चक्र गते, केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे अगमताहे एक वृते, जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते, सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट मिनासन मृत मथे, कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे, किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले, जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले, संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुंतबे, दुख दोग जहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे अच्छे, सुतता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे, जय जय होसी छात्र प्रकरण आद अनिल अगाद अभे, चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तच सरे, करकसा उठारे नर्क निवारे अधम उदारे तूर भुजे, दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे, जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुम चक्र निसुम मथे, बारज बिलोचन ब्रितन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे, दामनी प्रहासे सुखसर नासे सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे, चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग, जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद गाद उड़दंग, घंट का भी राज्य रुण जुण भाज्य भ्रम भय भाज्य सुनत सुरंग, कोकल सुन लाजय कल भाज्य सुकोप राजे मद औरंग, दुर्जन दल दज्जय मंथन रिझय सब न पज्जय रो रणंग, जय जय होसी मै कासुर मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग, चात्री प्रजोदन दोष विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते, धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन सुधमते,
जालपा जयंती सत्र मतंती दोष प्रदाहन गाल मते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियान खतंगी अभय अभंगी आदनंगी अगाद गते ब्रज लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पदे उदाहरण दोष्ट निवारण दोग हरे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन विश्व विधन सन श्रेष्ठ करे दामिनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रवर दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टायत बाण बोल निबाण संत पनाहण गूढ़ गते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दोग प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध स्वरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमान्य अतुल प्रमान्य शांत जमान्य आदंते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दोष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकण छत्र झमकण दामिन दमकण आदृते डुगडुगी दमंक बाग बबंक भुजा फुरंक सुध गते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आजुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दोट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवार पते दुधारे मुंड मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन धूम्र विदन सद आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकरदन दान अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज विदुंसन श्रोण चुनसन सुंड पार निसुम मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जदब अभूदन भय आनंद कहो तव कहो जता मत रैन तन करता कदी करता करीम का दर कृपाल भय अभूदन भय दयाल दाता दुरंग दुग दोग रह जय नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब आर पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड की उना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पल सूरा सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय का लखाए अनछेद तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अदभयनाथ सब रोग शोक ते राहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुग दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेक कह नाम तास कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चेन्नई रंग रूप जय खेद फेर नहीं कर्म काल सब जीव जान की करंत पाल हृदय बिरह सिद्धं स्वरूप बुद्धंग अपाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछेज तेज अनभिज अदाग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत

पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत ने दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे ने संत उपार गनी मन कारे पच पशु नग नाग नरादिव सर्व समय सबको प्रतपार है भोकत है जल मै थल मै पल मै कल के निकरम विचार है दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हार है दाहत है दू दोखन को दल दुजन के बल मै दल डार है खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद वेद कते भेद विचार है रोजी ही राज लोक राजिक रोग रोहान की रोजी न टार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भान बनाए देव अदेव खपे अहम एव न भेव लखे भ्रम सिंह भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सेव के श्री पदमा पद पाए आद अनंत गाद अद्वेक सो भूत भविगवान वह है अंत विहीन अनातम अदाग अदोग छिद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापत ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोगना सोगना भोगना भय है देव ही सने सबोतन ने व्रक्त गह छ है जान को देत अजान को दे जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्रीपद मापत ल है रोगंते अर्सोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे सत्रु अनेक चलावत घाव तऊत अनेक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संपूर्ण भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो सो पेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रता जल जज भुजंग सबे सिर न्यावे पाए सके नी पार प्रभाव को नेत ही नेत वेद बतावे खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे हरात न आवे नारद से चतुर आनंद से रुम नारी से सब हुमिल गायो वेद के देव ना भेद लगे सर हार परे हरात न आयो पाए सके नी पार प्रभाव से सना सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तय को मन में जय को अमितोज सब जग छायो भेद प्राण कतेब ग्रां भेद निरपास सब बजहारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत हैं छेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग ते हारे आद अनाद अगाद अभेग अद्वेग जपियो तिन हिकुल तारे तीरथ गोट की ऐसना दिए वदान महाव्रत हारे देश प्रयोग कर पेश सबोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्ट

बंतन दुरंत खग मृग महान जात प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लत मोर सुर ढुर जान मन मतौ चौर कुजरत कमाल राजक रहीम करना निधान कामल करीम जाता बिलोता ता प्रसो आजान पाहो अमितोज मोह रोसंग विरद करना निधान।

चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दय मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज्यों करिय रक्षा, राख

आप सवारी सेवकण को सेव गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जावद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे

बचन विचार चौपाई मन अग्नि सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहू नह ध्याऊ कान सुने पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोभ मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत पर यह चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दौ चल राख आप मुहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप बस जान कर कृपा करो मुहार परा मैं आन द्वार तोहे।

मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु वेटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस।

अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय

सतगुरु पातशाह जी दी दसवीं वाली साखी तखत साहब जी दे हड ग्रंथी सिंह साहब भाई सरबजीत सिंह जी संगता नु श्रवण करावणगे उपरांत गुरु के लंगर तुट वरतणगे सो समूह संगता नु बेनती आ हाजरिया भरो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: केवल जावे दोहे दोहरा ऐसे चन प्रताप ते धन प्रियो प्रताप
1: तीन लोग जय जय करे नाम सुजात दोहरा सर्व द्वार को छाड़ के है द्वार द्वार पाए गए के लाज सब दास द्वार दोहरा राज करेगा खालसा के रहना कोई और होए समय के बचे संग हो कुर्ति सराम ले शिकर कोड़ा पासा डंका बाजा हरे कने कलंक
0: तार छत्र चक्रवर्ती चित्र चक्र पुते स्वयं सुखम सुदास सुते
1: दुकाल प्रणास ले आलम स्वरूप सराम सने अमर विभूते
0: देखते को बसे सिर पे दुनिया पुते अजनान गुरु गोविंद सिंह सरकार जो सहाय धरते को बसे सिर पे दुनिया

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा छक गुरु महाराज दिया।

जिगी पते गच के जे करग जावे सो निहाल जावे सत श्री अकाल गुरुवर अकाल देख तेग फते गुरु पंथ खालसे जी दिनों दिन चर्ज कला रखनी।

0: विस्माद्र विस्माद्र विस्माद ना के फ्रेजंत विस्माद पौन स्वाद पाणी विस्मद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी
1: विस्माद संयोग विस्माद वियोग।

0: का चिंता करे जिन पाया जगत चिंता करे जिन पाया स्वस्थ जिन पाया स्वस्थ इसके नाम से नाम बन मान से नाम बन
1: लखने क्या चंगे लखना परवान लखने को मेरे दिखाना सहज ना पुणे बाला मार दे थान सहज सुपर जाना मार में छुटे प्राण लख सुपर लस्याना मार में ये पारा पुनाला ये
0: पाठ करते करते किया लिखिया बनिया लिखिया बनिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया लिखिया ल